ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 जून बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि अमेरिका और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रारंभिक समझौते का उद्देश्य आपसी संघर्ष समाप्त करना है। ईरानी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई के हवाले से ताज़ा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के उल्लंघन के बेहद गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि अब दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यही चाहता था और उसे औपचारिक समारोह की कोई खास ज़रूरत नहीं दिखती। हालांकि उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बैठक की योजना में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शुक्रवार को हस्ताक्षर समारोह की मेज़बानी की जाएगी। बुधवार को फ्रांसीसी रिजॉर्ट नगर एवियन में G7 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद ट्रंप ने इस समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे सभी और कहीं अधिक लक्ष्य हासिल होंगे। अमेरिका 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि ये एक समझौता ज्ञापन है, अगर 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये समझौता बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ सकता है क्योंकि हम उन्हें कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अंतिम समझौता होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब तक ईरान शर्तों का पालन कर रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है। G7 नेताओं ने पूर्वी फ्रांस के एवियन में 9 संयुक्त घोषणाएं अपनाते हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न कर लिया है। इनमें ईरान और यूक्रेन की स्थिति से संबंधित घोषणाएं भी शामिल हैं। संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने के बजाय G7 ने अलग अलग विषयों पर केंद्रित अलग अलग दस्तावेज जारी किए हैं। सम्मेलन अध्यक्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि ये नेताओं के बीच एकजुटता, सार्थक विचार विमर्श और वास्तविक सहयोग का पल रहा। भू राजनीतिक मुद्दों पर नेताओं ने ईरान को किसी भी प्रकार के परमाणु अस्त्र हासिल करने से रोकने, होर्मुज जलडमरू मध्य पर वैश्विक निर्भरता कम करने और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने के प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने अपनी एकजुटता की घोषणा की कि वे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियारों की आपूर्ति बढ़ाते हुए यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देंगे। पिछले साल कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन यूक्रेन से संबंधित वार्ता में भाग लिए बिना ही ट्रंप स्वदेश लौट गए थे। इस बार उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से चर्चा की। ट्रंप ने ये संकेत भी दिया कि अमेरिका रूस पर कच्चे तेल संबंधी प्रतिबंध फिर से लागू कर सकता है। कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ने के बाद अमरीका ने रूस से तेल आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी थी। माक्रों ने पत्रकारों को बताया कि वहां मौजूद सभी लोगों की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि शांति वार्ता करने को लेकर रूस कोई खास इच्छुक नहीं है। माक्रों ने सभी नेताओं के इस कथन पर बल दिया कि उन्हें यूक्रेन के मुद्दे पर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने इस साझा प्रतिबद्धता को एक वास्तविक बदलाव बताया।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते के बाद अगले वर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी अधिशेष देखने को मिलेगा, लेकिन एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य होने और जलमार्गों से बारूदी सुरंगें हटाने में समय लगेगा। बुधवार को जारी IEA के अनुमान के अनुसार 2027 में दैनिक आपूर्ति 80 लाख बैरल बढ़कर 11 करोड़ 3 लाख बैरल हो जाएगी। ईरान संघर्ष के कारण 2026 में आपूर्ति कम रहने वाली है। अनुमान में कहा गया है कि अगर संघर्ष समाप्ति समझौता टिका रहा तो पश्चिम एशिया से तेल उत्पादन और निर्यात में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी बढ़ोतरी अगले साल आएगी। वहीं तेल की मांग अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि के साथ 10 करोड़ 53 लाख बैरल प्रतिदिन यानी आपूर्ति से लगभग 50 लाख बैरल कम रहने का अनुमान है। IEA का कहना है कि संघर्ष के मद्देनजर कई देशों ने अपनी ऊर्जा रणनीतियों की समीक्षा की है और अब ये अधिशेष भंडार फिर से भरने या नए भंडार बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। चीन से आने वाले यात्रियों की संख्या में जारी गिरावट के कारण मई में लगातार दूसरे महीने जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के अनुसार पिछले महीने 35,50,000 से अधिक लोग जापान आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% कम है। मई माह में 19 देशों व क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। दक्षिण कोरिया से पर्यटकों की संख्या में 15.2% की वृद्धि हुई और ये लगभग 9.5 लाख रही। वहीं ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 14.6% की वृद्धि हुई और ये 6,10,000 से अधिक रही। अमेरिका से आने वाले यात्रियों की संख्या में 7% की वृद्धि हुई और पश्चिम एशिया से आने वाले यात्रियों की संख्या मार्च और अप्रैल में काफी कम हो गई थी, लेकिन कुछ एयरलाइन कंपनियों की सेवाएं बहाल होने के बाद वहां से आने वाले लोगों की संख्या 67.8% बढ़ गई। इस बीच चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 60.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये लगभग 3,10,000 रह गई। इसमें लगातार छठे महीने गिरावट आई है। जापान के साथ बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीन सरकार ने पिछले वर्ष शरद में अपने नागरिकों से जापान की यात्रा न करने का आग्रह किया था। थाईलैंड से आने वाले यात्रियों की संख्या में 8.6% और वियतनाम से आने वाले यात्रियों की संख्या में 2.1% की कमी आई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि इन देशों के पर्यटकों के लिए चीन अधिक लोकप्रिय गंतव्य बनता नजर आता है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।